0: हटो हटो हटो हटो हटो।
1: अरे देखो मेरे पति को।
0: आप इधर मत करिए, मैं हूँ ना।

0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98562279।
1: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट्ज अंतर मन के आवाज।
2: संयोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही
3: एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है।

अजुषद साथी घड़ी हाथ में सुमंत भाकला पनी कार्यक्रम स्थान दी सके पूरा पते पनी समर्थन पर सुमंत साथी के कार्यक्रम में तो भाकला सुनो पर पलाह बंदे अजुषद साथी आज तो सिंह पलामा रहेगा कमी होते इसी बड़े सुमंत सुमंत नया लुक यो वाली पलाह की पनी कार्यक्रम संबंधित है चलते मुझे जनता भी देना पड़ता है।

लगाओ साथी के होने भी लगाए थे पूरा मेरे पान मन इतनी मात्र था मुझे पानी सीधे के घर को झाल धोका खाता पीतो स्टोटो अपने किचन को डेकोरेशन दराज पलंग सोफे टेबल सोफा सेट एक बार भेज जाना था ठीक मेरे तीन होने लगाने का था कहाँ पर आए थे लोग इधर आने का है पनी वस्तु तो छह हो रहा है हाँ उनसे भी हो वो अलारा में रहे तो सभी का पानी करने के लिए बना था न पसंदी को सा न तो धुलाने लाएगा सा बस वो वायर बना के हजुर आफ्नो सफर

0: Lens, Outward Lens, Focused Lens, User Lens तथा Contact Lens और Kind के साथ ही विभिन्न ब्रांड का श्रृंखला चश्मा और करें सुपथ मूल्य में बिक्री करेंगे। साथ में आंखों तथा विभिन्न रोग का औषधि अपनाएगी। श्यामजा मेडिकल हाउस धीरे गौरा समझने को श्यामजा चश्मा घर एंड आंखा क्लिनिक बंकुरा चौक धीरे गौरा प्रोपाइटर आशा राजू मोबाइल 98063 13195 र 98463 15368।
1: पैसा भयो पैसा भयो के भयो पैसा भयो के भयो के भयो पैसा भएपछि कुन पसलमा कुन पसलमा

0: Yo no sé este carro, esto no. Yo no he visto carro en sonde.
1: Anche, con el carro puta carro con él, con el carro puta carro puta carro de lira, ¿eh? Ah, sonde, no hay carro más puro que todo el arco ni la unidad de papá, ¿no? Un son, todo pasa en la mata y como la rato, un son, ¿qué te pasa, no? Pensa ni, tú le gula tu sensi que puta carro de papá, ¿no? Adile bannu baiko, sattu kurai putsa tinte kagote na.
0: Kasu ga hami kaha, nutri ite kaha, prepazanda, karpai chur nau kaha. Jaha santi, natvati maha ekriya. Sati na el pujata samudri painu kasa. Kai matu bata koniga sri product dhuru, toto ta kudra mulli ma upulat parahe kasan.
1: Sensi ga puja samudri pasal, tau te kala e karma ki baza saum sate.
0: Upai ter, samichya guru. Sampalka han anubichar ek sati, titi stik sai ek. Nal han anubichar ar sati, priya si tan sai bai.
1: Sai ko sasta, kari ko mo bepar lai akashat printing sewa chahin cha.
0: Aba chinta na linu ko sarada an sisol printer dhiyo, jaha gunastar na viswas tam sangi vetin cha.
1: Banner, fix print, poster, e-book, letterhead, t-shirt print, visiting card, vivahatu nimantrana ka sahit, top middle seat lagay ka, sabse sewa yuti thao ma, uchit mulle ma. Sathe, hami kaha, tilame pani likhi cha.
0: Chitu sewa, sabha printer ni dhiyo sammandha, tisi lipa, rupawi sabay po.
1: Soran and Sisal Print Udyog, Supra Gandaki Nagar Palika ko guest sange.
0: Proprietor Durga Nam Shrestha. Sampark 98463-1209 ra 98041-2718. Aajai sampark garnuhos.
1: Kina ho andi tiri ta? Sura ko birthday ko dinma bhane khushi dekhina hunna ta? Herne kaam chhe, yeti ta pauna aunu bhayeko chha. Malai ta masu kahan bata lyaune bhanera ra pasari chinta chha. Bazarai bhari fresh aauchha, jahan bata lyaye pani huncha bho. Kheko chinta linu bhayeko chha yo didile. Chinta haina ni bhaini, masu ta jahan bishwas tahan bata matra linu parcha. Tesho bhaye Vivek Dhungana ko Supra Gandaki fresh house ma janus. Aajkal sabaiko paido ra bhai tehi bhaneko chha.
0: उपलब्धि के सहाउस दूरी दौड़ा पना हो पंचमणि स्कूल को अगाड़ी सिकेंद्र की सहाउस को आगे में साखा पसंद दूरी दौड़ा बिक्री बाजार संगील विकास बैंक पछाड़ी यहाँ विवाह व्रत बंदा पास में पिकनिक पार्टी भोज भतेर के लागी आवश्यक खसी को कुकुरा का मासु पाइन पसाते जिंदो खसी बोका पूजा का लागी चाहिए बोका र लोकल कुकुरा पनी पाइन था साथ ही ताजा अंडा प्रसिद्ध प्रोटीन्स पाई चाहिए मापनी हमें लाइव समझने को
1: उपायते विवेक ढूंढना जाना की ढूंढना मोबाइल अंतानबे पाँच साठी छसठी एक सौ छत्तीस अंतानबे एक इक्यावन छसठी एक सौ छत्तीस
0: अरे यार उसी आर्यन लीरो पता ही रहो
1: लीरो ना आर्यन बस इसमें को सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी जाति को सांस्कृतिक जोड़ों ने नाच दिखाने वाले को ये बार सभी जाति को पोषण की न बने रजाना लाएगी तो क्या क्या टाइम चुकूंगी वाला तो नहीं दिए तो लाएगी गहना चाहिए तो सर अच्छा सुन बंदा कौन खेला और आय ना कौन खेला जरिंदी को गहना नहीं चाहती ना रंग से डिजाइन को पाए लेने वाले को
0: एक सुबह यूट सिंगापुर पिंसी एंड जोरे छप्पा संगीत जाऊंगा तो वो तो यहाँ पे समाज के दाजु भाई तो लाइक अंग्रेज का चार पंद्रह जैकेट सिंगापुर पिंसी नहीं लेगा जरिंदी को गहना देते सबसे जात जाति को पोषा के उसे खरामनी पाए ने कहा वाले को इंटो
1: हम कहाँ गुरुंग नगर निवार छतरी तामंग छतरी बुजुर्ग जाति के ड्रेस जीटीसी द्वार प्यापा पर्स मणिपुरी सिंगापुरी होलन लुंगी शॉल कोरियन टी शर्ट कमर बंद दौरा सुरवाल छतरी टोपी लगाए परंपरागत जाति दर्जना शिरबंदी सिरपुर टिकमाला झुमरी ज्वारलिंग मारवाड़ी पाते सुन फुलाकी दौरे फुले जंतर चंद्रमा नौ जोड़ी असर्ती पंचमाला मुगमाला हमीर माला नपुसिको झपुसिको ताय माला दूसन नकसी कंदी बिरमली आशी सुरपेटो सुरपे दूरी लगाएत संपूर्ण कोटि का आइटम पाइन का साथ ही आधुनिक डिजाइन का दौर गहना ग्रामी हार चंद्रहार मिनी हार सुपर हार कमल सूत्र बालचुगा पंच धातु अंगूठी ग्रामीण झुमका बिगड़ा झुमका सिक्री लॉकेट मैग्नेटी लहरी चर्केती लहरी घुमटो क्राउन सेंडिल जिम्बो र ब्रुनाई को माछा पाइन
0: सुपर कार युएस सिंगापुर पिक्सी एंड ट्रेलर शॉप बुकिना बैंक को एक घर माफी दूरी गुमरा प्रोपाइटर आर एस कुमार श्रेष्ठ दुबई अठानबे तीन इकतालीस चौरासी दो सौ चौसठी अठानबे एक इकतालीस तिरपन्न तीन सौ पाँच
2: वही पसंद बात हो मोरा बिजारिया घर था। पाइयो पासो त अनि नि त्यो चामलको भात खाएर मुख फेर्न पाएन हुन्थ्यो नि बुहारी।
1: आज मैले भुलभुले बारे राइस मिलबाट चामल ल्याएको छु नि त, त्यहाँ त सावित्री जिरा सावा बेचुरो अहिले अनि लोकल धान आफै अगाडि कुटेर बिक्री हुँदो रहेछ नि, कति मान्छे जाँदो रहेछन्।
2: आफ्नै मिलबाट आफै अगाडि तोरी र तिल तिलेर सुक्खा खारे तेल र पिमा उत्पादन तथा बिक्री गरिन्छ। साथै विभिन्न प्रजातिका धानको स्वादिष्ट चामल चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहो। साथै तेल पनि पेलिन्छ, होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। सम्पर्क भुलभुले बाराही राइस मिल राखी पानी पेट्रोल पम्प अगाडि, प्रोप्राइटर अर्जुन लम्साल, फोन 65414222 र 98 5 60 21 692।

Torino de Campanaggi, diviso in bancari letto in un salvo sani e pino. Se c'è molto a fare, non si può mai che la mamma si fa fatto di noi, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, ज्ञान समीप जाना सकता इसे भी आपने घर उड़ी करी दौड़ी में आने करी इसका पारा तो इस बारे में सुखे का डिस्काप जान करो पूर पुल्हा वन्हा आगे जाना न दियो सुरुत्त पुटा निभारे में दिखा लो वन उस काय पची रामरेरी आगे में जाओ उठा में जाता रामरो दस परों सा भरे रा जंगल में आगे न लगा हो वसी करी अचानक वन में आगे लगे रहता उपकरण सबको स्थानीय समुदाय वन कर्मचारी रो सुरक्षा कर्मी को पहल में निभाओ वन में आग लगाने फौजदारी को सीखो कसैली वन जंगल में आग लगता दौड़ी का रुख बिरुवा को क्षेत्र पूरा पकड़ाई

0: del divenire pelle patate, antirassista e molto buonare del suo equilibrio hotel management a tutto il corona sopra, is distinta, hotel management, the management tutta, nella prima della di Ganadan Saram di Carandere, sir.
1: Doccia si c'è, santo sei cic matavere, pesat muxitai. छात्रवृत्ति यातायात लगाए के सुविधा भाई को इस स्कूल में आज ही भरना पड़ेगा आत्म सीट सुरक्षित करने को
0: आप जानकारी का लगी यहाँ लगता है वजह की अपन नाटक बने समा विद्यालय प्रशासन है फोन यूनिवर्सिटी कॉल कर दो जिसे पता थी मोबाइल अंतरा पे पास साथी पॉलिटिक्स पास से संपन्न पेशा अंतरा पे पास साथी पॉलिटिक्स आज से पता थी ना संपर्क करना सकेंगे सर
1: प्रधान अध्यापक एवं बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय शुक्लाकुंड के चार दूल्हे को बातों में
0: यहाँ लगता है वजह की अपन नाटक बने समा विद्यालय प्रशासन है फोन यूनिवर्सिटी कॉल कर

हाइजेनिक रान्च प्राली, शुक्ला गंदकी आज सपल एसलेटोल बड़ा पते, तो प्राइकर,

दुसरी वीस पंधरा उत्पादक सहकारी संस्थांना आबद्ध किसान हल्ली दूध विक्री बाबत मात्र मासिक तरी 2 करोड रुपया आमदानी करतो वरिपासन 26 विश्व दुग्ध दिवस अवसर में संस्था ने दिए जानकारी अनुसार पंधरा किसान हल्ली एक वर्ष को अवधि में 23 करोड रुपया बराबर को दूध बिक्री कर संस्था के व्यवस्थापक राजीव भुजेल अनुसार सहकारी मार्फत दैनिक 8 रुपया भाग बिक्री आगे तनहू में संकलन

0: नगर ने सांसद माथि कार्यवाही को तैयारी सभामुखी जबरजस्ती संसद को नियमावली पारित करे अदालत जाने बारे विपक्षी दल आंतरिक छलफल में
1: केन्द्रीय प्रदेश सरकार को आगामी आर्थिक वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम भोलि साने का दूध उत्पाद किसान दूध बेची गई मासिक करीब 2 करोड़
0: नेपाली भूमि में तटबंधन बनाने भारतीय

0: तो चैनल गेट ट्रस्ट निर्माण टैंकिंग स्टैंड फलामे स्टील का व्हीलिंग घर निर्माण का लगी आवश्यक पड़ने तेल स्टील का संपूर्ण सामान खिलौना कुर्सी टेबल बेंच लगाए फाइबर गैस बाट उत्पादित फन पार्क एवं बाल बालिका का लगी आवश्यक पड़ने सामान उपलब्ध छ।
1: साथ ही शुक्ला गंडकी में पहले पटक कृषि फार्म तारबार भर्जका विद्यालय संस्था तारबार करी संरक्षण का राशि अत्यंत उपयोगी विभिन्न साइट का दुआई जानी सुपथ मूल्य में उपलब्ध कराइन
0: ओंकार नाटिला संपर्क 9856-60113 9800-69794।
2: हमारा कार्यक्रम अरुण को भाग काम विशेष
1: सुनोस् न ब्यानर बोर्ड र एपसेट को काम त सबै सिक्किम एपसेट प्रेस बाट नै गर्न पर्छ कि त्यहाँ राम्रो मात्र होइन उत्कृष्ट पनि कार्यक्रम सिक्किम एपसेट प्रेस गणपति मजबुत रहेको भवनमा
2: यहाँ ब्लिक प्रिन्ट ब्यानर रोडिङ बोर्ड बनाइनुका साथै मायाको चिनो टप मिडियाको प्रमाण पत्र बनाएको छ। पत्र पत्रिका पुस्तक कार्यालयका कागज पत्रहरू छाप भिजिटिङ कार्ड परिचय पत्र रजिस्ट्रेसको बिल भरपाई पासबुक संसद र विवाहका कार्ड तथा निमन्त्रणा कार्ड वा शिलालेख बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झाउनु
3: मोबाइल

0: 103 triple art
1: antarman ko awaz
2: section 1
3: studio kalche
4: aile biyana ko 5 bajyo
5: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पो चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साटफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301